0: बिन तेरे कुछ भी नहीं मैं।
1: Te acompañamos. Talanga Estéreo 90.9 FM.
2: Check this one,